पुकार ते तरलियां तो बिना होर पल्ले की पैंदे। मालक तो विछड़िया दे पल्ले होर कुछ नहीं। कूक पुकार परेशानी दे तरलियां तो बिना होर कुछ नहीं। ते ए कोई बंदा कवे कि तुरों डिगी हुई आफत है, ऐसी गल नहीं। साहब कहंदे ने मेरे अपने कर्मा करके ये कुछ मेरे पल्ले पिया। मालक नूं पा जाण वास्ते मेरे पल्ले गल ही कोई नहीं। ओदे दर ते प्रवान होण वाली मेरे कोल कोई चंगियाई हुंदी तां मेरी हालत क्यों हुंदी। मन कुचजी मैनू चज कोई नहीं। अमावन डोशड़े चज है कोई नहीं, ते दोषां दा अंत कोई नहीं। गलतियां भुलां ते कमियां दा अंत कोई नहीं। अमाउंदे दोष मेरे जीवन विच ने। अमावन डोशड़े हों कौं शौरावन जाऊं जीओ, मैं किवें मालक नाल मेल कर सकां। पति परमेश्वर नाल मेरी सांझ किवें बने। एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाऊं जीओ, मेरे नालों चंगे चंगे गुणा वाले चंगे चंगे सुचज वाले चंगी चंगी करनी वाले किन्ने बैठे ने, कौन मेरे वाल निगाह करे।

सौ रावे आ जिन्हां ने पति दा प्यार प्राप्त कीता, जिन्हां ने मालक दी खुशी प्राप्त कीती। से अंबी छावड़ी है जीओ, ओ अंबा दी छावे बैठिया, खुशियां बाण दियां ने। पति प्यार दे आनंद विच मगन ने, जीवन दा रस लै रही ने। से गुण मंज नावनी, ओ गुण मेरे विच नहीं। हों कह जी दोष त्रेउ जीओ, मैं किदे ते दोष देवां, किसनू आखा माड़ा कि मेरी हालत किसने कीती। आम तौर ते मनमुख दी ये दशा है कि वो जो भी करता है ना, उदे सामने फिर जो कुछ नतीजा आउंदा है, वो आले दुआले ते दोष लभदा है। किसी होर दे कारण करके मेरे ते आफत आई है, विपता आई है, मेरी बेरसी होई है, अपने दोष नहीं देखता। हालांकि पावन बाणी विच बड़ा स्पष्ट किया गया है, दद्दा दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। और अपने दोषा वाले झात मार लेनी भी बड़ी वड्डी गुरमुखताई। दोष हुंदिया होया, गुनाह हुंदिया होया, गलतियां हुंदिया होया, इन्हां ते निगाह मार लेनी ही बड़ी वड्डी गल है। जेड़ा अपनियां गलतियां वल ना वेखे, अपने अगे आए हुए नतीजिया तो भी दूजिया नू दोषी ठहराउन दा जतन करे, वह बंदा कदे ठीक राह ते नहीं तुर सकता। दूजिया च दोष कढ़न वाला बंदा कदे आप ठीक नहीं हो सकता। शुद्ध पवित्र ते निर्मलता वह होवेगा जो अपने दोष लभण दा जतन करे। इथे अपने दोष लभण की गल मारे सच्चे पातशाह ने शब्द द्वारा सानू प्रेरणा बख्श की। हों कह जी दोष त्रेउ जीउ, मेरे अपने इन्ने दोष ने, मैं किसी नू काहदा दोष दे। मेरे विचों गुण नहीं हन

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बो तायो। मथुरा कहिंदा पट के जद तक साढ़े भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साद सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोगदे हैं, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दित्ते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, ताई आखिया

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हैं हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं। भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

ख्याल रखा है। गुरु सूरज के मुआफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

ते अवगुण हमारे दया करो किच मेर पावो डूब दे पत्थर तारे जोड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगे काते प्रणवत नानक हो।

रामायण कला धार जग में परवर। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट हुए, ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच, अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है, ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहे। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असीं की करांगे। साहब कहण लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहण लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसारी हो गए, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया, ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया, ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नो करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराया, सारा कुछ ओहदे भंडारियां च भरिया पिया, पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोका ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्म कांडा दे नाल अनेकां जतना दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नू लब्भा नहीं, किसे नू दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उन्हां नू लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रावां एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड़ के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होया, घर बार च रहिंदिया होया, परस्पर सत्कार दा अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु दे दर्शन करदा होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इस संसार च रहिंदिया होया प्रभु दे प्यार नूं मानदिया गुरु दे प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है, गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है, ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पएगी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने, साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै, जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जिहड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ, इसे संगत च गुरसिखां विच वाहिगुरु आप वसदा है, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म दी खुशी। इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सतसंगियां ने गुरु प्यार वालिया शब्द विचार वालिया नाम की कमाई वालिया की खुशी लैण दा यतन कीता सदा। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहिंदे, भाई साहब कहिंदे ने जे किते गुरसिखां दी सेवा च लग जाइए ना ते गुरु वालों बड़ियां खुशियां प्राप्त होंदियां ने, एडा वड्डा पुन है, जिहड़े उसले प्रचंत पुन्नां दीआं गल्लां सन, जिहड़े जतन लोक प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन, पूजा पाठ पुन दान तीर्थ यात्रा आदि वड्डे वड्डे यज्ञ आदि, भाई साहब ने सब नीवें पा दित्ते,

कैसा पुल है भाई साहब? कहने ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जा, पांच पांच बारी प्रयागराज रा के त्रिवेणी दे इशनान करे।

सफलियो रुखड़ा अमृत जांग का नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फला वाला आंदे जांदे राही ते ओदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु का नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना जीवन सवार लें।

जा सिफत करी अरदास। कई लोग कहते जदों भी पाठ करन बैठिए, भजन करन वास्ते बैठिए, मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार नहीं, मन दी पटकना ताहीं खत्म हो सकती है। मन दे परम ताहीं दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करिए और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो, दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे और परमेश्वर दी खुशी भी प्राप्त।

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखी तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपनी सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दिया डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन पावे सब कोए। ऐ बादशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मन विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

किसे तड़किया मित्र सुत नाल पाई के किसे तड़किया पुरन सके नाल जवाई किसे तड़किया सिकदार चौधरी।

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, चरण छलो मार्ग गोविंद। ये केड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी, ओदे गुण गाउने। ये मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जो नाम का अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम का अमृत समा गया है, उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु का परिवार नजर आते हैं। जे उदा परिवार है तो एक पिता एक सके हम बालक, साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसके बालक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़ियां जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जाणगे। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम, हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाए विश्राम। जित कर हर कंत ना प्रगटे, पाठ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो। पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोए। दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना को।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

श्री मुखवार पातशाही दसवें खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करूं निवास खालसा मेरो मुख है अंगा खालसे के हो सदसा

को दानन लागत नी को आगे फल इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब फीको मोह गृह में तनती मनती सिर लो।

हे गुरु की संगत सिख एजुकेशन विद्या का प्रचार आहा ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपनी दात निरंकार तो मंग रहे हैं।

बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहा

रे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाईआं। बड़ा आनंद है कि रोणे झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितरे नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। ते जदो कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदो कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिरे महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदो हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है, ते नाम सुनदा भी अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों। नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने, इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना। साहिबां च कहिंदे ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तां हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, इह किवें हो सकदा? उह इक अवस्था है। कोई उहनूं अनहद नाद दी गल करदा है, कोई उसनूं इलाही नाद दी गल कह के करदा है, कोई किसे ढंग नाल दसदा है, लेकिन इह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद दी अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह वी बोझ जापदा, सुनना वी बोझ जापदा, करना वी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चियां वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चियां दे अंदर शौक पैदा करता जांदा है। बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़ियां तरक्कियां करेगा, उह चा लै के तुरदा है। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिआ बहुते तां रोंदे ही वेखेगा, उहनूं इक वारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, इक तां जकड़ के बहिणा बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाते ने उसकी समझ तो बाहर आता है, वह पहला पहला बड़े परेशान होता है। पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अखर है बोझ जापते, लेकिन चार दिन बाद वह जो बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उ अखर मौज बन जाते हैं। उन्होंने अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ ना लवे वो मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापदा है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती है। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने ना, कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह उह बेनती कीती है वी स्कूल च जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, उह वरिआं पति 15-15, 20-20 वरे बोझ ही ढोंदे रहिंदे, पढ़दे भी किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे हुए दुखी होंदे हुए, कई वारी वह फेल हो जाते, ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे। ते फिर उहदे माता पिता उहनां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा है, विगार कटदा है, तू कसीट के तुरिया आउंदा। वैसे पढ़न वाली गल कोई बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਣਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ।

0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना है। मालक दा दर केड़ा है, सो दर केहा सो कर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे। ओ केड़ा दर है जिथे भी साध जन बैठ के उन्हें चेते करते ने उथे।
1: You are listening to SeekNet Radio.

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी

सफलियो रुखड़ा अमृत जांग का नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलदा है ते जिहड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरखत का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरखत ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना

हों ते बलहारी ना। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हों तिन बलिहारे जाओ मैं उन्हां तों बलिहार जाना।

तिहाया क्यों लहे जा सर पीतर पार। कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है वो त्याया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी ओदे नाम रूपी अमृत विच इशनान करन दी।

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, ऐ परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत, आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे, वो समझदा है कि मेरे वर्गा हुण कोई नहीं। ये जड़ी मैं है, एहो इंसान नूं चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और ये भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती, उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नूं जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे हौमे और माया आ जावे उत्थों प्यार उठ जाता है। और हौमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके, गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोगों नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

जां सिफत करी अरदास। कई लोग कहंदे ने जदों भी पाठ करन बैठिए, भजन करन वास्ते बैठिए, मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार ने, मन दी पटकना तां ही खत्म हो सकती है। मन दे परम तां ही दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करिए और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो, दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे और परमेश्वर दी खुशी भी प्राप्त होवेगी।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए बेबे नानकी और नाल उन्ना दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखिल होए और पज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे धीए जा अपनी मां नूं मिल उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुकदे जा।

हाँ वारी बन जा खनिए बन जा तो साहिब के नावे ऐ परमेश्वर मैं तेरे तू वारी तेरे नाम तू कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं। आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले नाल बेबे नानकी दे पर

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनु गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जयराम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज दे दर्शन होणगे। पाईया जयराम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसीं आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। पाईया जय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह आपने तिन भावे सब होए। ऐ बादशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे राय पोए की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने एक सद लाई, सत करतार ए सत करतार। अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए, गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए, कंढ ते हाथ फेरे है, अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई, बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं, तैनू बड़ा मैं झिड़के है, तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है, पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया, कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए, मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने, माता जी दी अखां बंद ने, हाथां विच चोला है। आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै, आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया, लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां, सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा, घुट के छाती ना लाया, अथरू किधे रुकन। कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई, संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताँ कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा जिदे हिरदे विच प्यार नहीं जिदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है चंगा पति बनना जरूरी है चंगा पुत्र बनना जरूरी है चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता है ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसे गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना एक कथा कहानियां सुननियां हैं अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया ते आओ एक कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मन विच प्यार रखिए साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

बेबे नानकी नू जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ए नहीं हो सकदा सात संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं किहा मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंदर दर्द ना पाए भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दीर कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने